तर्क वेचि संकुले विरक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीह।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से रामलला की श्रृंगार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा आप हमें DTH, YouTube के आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन AIR की ऐप पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओ, ये विशेष प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। इस विशेष

हम इस विशेष प्रसारण में हमारे संवाददाताओं से भी जुड़ते हैं, उनसे यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। चाहे भगवती नगर बेस कैंप जम्मू के हमारे संवाददाता हो या नुनवन बेस कैंप, बालतल बेस कैंप, हर जगह हमारे संवाददाता तैनात हैं और उस बेस कैंप या ट्रांजिट कैंप से जुड़े सभी अपडेट्स वो आप तक पहुंचाते हैं। कुछ ही देर में हम हमारे संवाददाताओं से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। एक क्रम में हम हमारे संवाददाताओं से जुड़ते हैं। पहले चलते हैं हम भगवती नगर बेस कैंप जम्मू, उसके बाद हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग का हाल हम तक पहुंचाते हैं, फिर हम नुनवन और बालतल बेस कैंप्स में हमारे संवाददाता जो हैं उनसे जुड़ते हैं फ़ोन लाइन्स के ज़रिए और उनसे भी हम अपडेट्स लेते हैं। श्रोताओं, आप सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।

0: मौसम जिसकी वजह से ये यात्रा में अहम भूमिका होती है।
1: जी
0: तो इधर कृष्णा महागुण स्टाप पंचतरणी और श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा समेत ऊंचाई वाले क्षेत्र में अत्यंत शीतल नमी से भरपूर और दुर्गम मौसमी स्थितियां बनी हुई है। इन क्षेत्रों में घनी धुंध के कारण दृष्टिया भी कम हो सकती है, जबकि दोपहर के समय तेज वर्षा के आसार भी है, जिससे यात्रा मार्ग फिसलन भरा और दुश्वार हो सकता है। लगातार वर्षा से हुई नुकसान के मद्देनजर पहलगाम मार्ग पर मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। इस कारण से आपको पता ही है कि ये मार्ग आज भी आरजी रूप से बंद है।
1: जी
0: तो इस समय श्री अमरनाथ जी यात्रा के आवागमन व्यवस्था केवल बालतल मार्ग से ही सुचारू रूप से जारी है। इस क्रम से जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 54 छोटी बड़ी वाहनों पर मुश्तमिल 1605 श्रद्धालुओं का नया जत्था बालतल मार्ग के लिए रवाना कर दिया गया है, जो कि 11 बजे तक गाठी में प्रवेश करेगा। और आपको ये भी बता दूं कि आज जो राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बिल्कुल ही बंद है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों के इस जत्थे को आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई थी। तो इस जत्थे में 1215 पुरुष और 335 महिलाएं, 48 साधु, 5 साध्वी और 2 बालक साधु भी शामिल है। 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान कल मजीद 5211 शिव भक्तों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा पवित्र गुफा में दर्शन प्राप्त किया। इसके साथ ही यात्रा के आरंभ से अब तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की जो कुल संख्या बढ़कर 4,46,788 हो गई है,
1: जी,
0: जो कि एक अच्छी तादाद है। इधर पहलगाम के नुनवर आधार शिवर, शिशनाग और पंचतरणी शिवरों में इस समय कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं है।
1: ताहम

यात्रा ट्रैक्स में मरम्मत की वजह से बंद रखा गया है फिलहाल, और बालतल के मार्ग से ही हमारे तीर्थयात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी गई है, और आज भी वो बालतल के मार्ग से ही तीर्थ यात्रा करेंगे। 1605 ऐसे तीर्थयात्री जो आज भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से रवाना हुए हैं, 54 छोटे बड़े वाहनों में ये काफिला भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रवाना है। 1215 पुरुष, 335 महिलाएं, 48 साधु, 5 साध्वी शामिल हैं इनमें, और 54 छोटे बड़े वाहनों में ये तीर्थयात्री अभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रवाना। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, अभी फिलहाल सिर्फ बालतल के मार्ग से ही यात्रा हो रही है, क्योंकि पहलगाम का पारंपरिक मार्ग यात्रा ट्रैक्स पर मरम्मत होने की वजह से बंद रखा गया है। कुछ ही देर में हम हमारे बालतल से जो हमारे संवाददाता हैं रहीम रिजवान, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे फोन लाइंस के जरिए, और वहां के क्या कुछ हाल है उनसे जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: जी श्रोताओं, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रहीम रिजवान, जो गांधरबल से हमारे साथ जुड़ते हैं और बालतल बेस कैंप के क्या कुछ हाल हैं वो हम इनसे जानते हैं। फोन लाइंस के जरिए ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी रिजवान।
1: जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रोताओं को हम यहाँ के मौसम की स्थिति के बारे में पहले बताते हैं कि यहाँ मौसम कैसा है।

दस शादियां, चार ट्रांसजेंडर एवं 112 सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। तो उन यात्रियों को फिलहाल रात्रि विश्राम के लिए बालतल बेस कैंप में रखा गया। तो उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष जिला प्रशासन गांधरबल ने बालतल मुक्ति मार्ग से हर पड़ाव पर यात्रियों के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, जिनमें भोजन वगैरह की अगर हम बात करेंगे या चिकित्सा की बात करेंगे तो वो बिल्कुल बेहतरीन सुविधाएं जो है उनके लिए जगह जगह रखी गई है। क्योंकि इसके साथ साथ यहाँ यात्री जो है वो सुबह सवेरे 2 बजे से ही दुमेल कंट्रोल गेट की तरह बालतल बेस कैंप से निकलते हैं और 3 बजे से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो 3 बजे के बाद इन बाबा बर्फानी के भक्तों को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाती है RFID कार्ड हासिल करने के बाद। तो इस यात्रियों के लिए सुबह 2 बजे से ही जो यहाँ पे सेवादार हैं वो काम में लगे रहते हैं और सुबह सवेरे उठकर उनके लिए भोजन वगैरह तैयार करते हैं। वो भोजन करके ही यात्री पानी यहाँ पे सेवादार हैं वो काम में लगे रहते हैं और सुबह सवेरे उठकर उनके लिए भोजन वगैरह तैयार करते हैं वो भोजन करके ही यात्री पानी की बोतलें, रेन कोट, गर्म कपड़े, जूते और लाठियां हाथों में लेके पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्योंकि बाबा बर्फानी के भक्त जो है और जो हमारे सेवादार हैं वो यही आस्था बने हुए हैं कि बाबा बर्फानी के भक्तों की सेवा करने से ही उनको मन को शांति मिलती है। क्योंकि धार्मिक रूप से जो यात्री देश के विभिन्न भागों से यहाँ आकर पवित्र गुफा की ओर जा रहे हैं और बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाते हैं, लिहाजा जितनी भी सुविधाएं यहाँ जिले प्रशासन के द्वारा की गई है उसको लेकर यात्री संतोष व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। न सिर्फ बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक बल्कि जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर कारगिल राजमार्ग है उस पर भी चारों ओर सिक्योरिटी के कड़े प्रबंध किए गए हैं और यात्री वाहनों को तरजीह बुनियादों पर आगे बढ़ने

0: बेस कैंप पहुंचते हैं।
1: जी
0: उन्हें भी रात्रि विश्राम के बाद सुबह सवेरे जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ कड़ी सुरक्षा के बीच जाने की अनुमति दी जाती है। अगर उन यात्रियों ने या जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से जो भी यात्री घाटी आगमन होते हैं
1: जी
0: उनके 5 बजे से पहले ट्रांजिट कम शादीपोरा या ट्रांजिट कम मनगाम जो हमारे श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर दो महत्वपूर्ण पड़ाव है यात्रियों के लिए, ये दोनों पड़ाव पार किए तो उन्हें अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाने की अनुमति दी जाती है। अगर 5 बजे के बाद वो यहाँ पहुंचे इन दोनों पड़ाव पर तो उन्हें यही रोका जाता है और रात भर इन्हीं दो पड़ाव पर इनको कायम करना पड़ता है जहाँ प्रशासन ने यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं।

जैसे आज फिलहाल बालतल बेस कैंप से भी किसी भी तीर्थयात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि जो तीर्थयात्री ऑलरेडी वहाँ कल शाम निकल चुके थे पवित्र गुफा की ओर, उन्हें आज वो आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वो वापस बालतल बेस कैंप भी लौट जाएंगे तीर्थयात्रा करके। पर फिलहाल आरजी तौर पर बालतल बेस कैंप से भी किसी तीर्थयात्री को अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

समाचार सुनेंगे समाचारों के उस पार। इस विशेष प्रसारण में श्यामाना जी यात्रा 2026 से जुड़े सभी अपडेट्स लिए हम फिर हाजिर होंगे। सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप

0: करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर दर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की

0: बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल

कलीराम ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट पासेस पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल विद स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर पेपर लीक्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेलकम्स पैसेज ऑफ द बिल, saying it will make examination system more robust. Saudi Arabia and 13 other countries announced maritime defense alliance to protect shipping in

0: bill containing stringent legal provisions.
1: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर

पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली

0: स्कूल और कॉलेज आज एहतियात के तौर पर बंद रहेंगे। इस दौरान रियासती सरकार ने जिला इंतजामिया को सख्त हिदायत जारी की हैं ताकि नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को तेजी से बाहिफाजत निकालने को यकीनी बनाया जा सके और उन्हें सैलाब से मुतासर इलाकों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: जम्मू और कश्मीर में अहदेदारान ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH 44 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रखने का हुक्म दिया है ताकि समरोली में लाढ़ा के नज़दीक उधमपुर चेनानी हिस्से पर बहाली के काम में सहूलत हो सके। केरलम के साहिल पर आज रात ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: केरल के साहिल पर जुमे और हफ्ते की निसफ शब में मछलियां पकड़ने वाली ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ट्रॉलिंग पर सालाना पाबंदी

मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने के लिए एक समझौता किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ये समझौता गजा के लिए कतई तौर पर एक अहम कदम है, जहां फलस्तीन की नई हुकूमत अमन से मुतालिक बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी ताकि फलस्तीनी अवाम की मदद की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को अपनी सिक्योरिटी का हक हासिल होगा, जिसका वो मुस्तहिक है, और गजा को दहशतगर्दाना हमलों के लिए एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमास के एक सीनियर अफसर ने बताया कि वो गजा में हमास और दीगर ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने के लिए तैयार हो गए हैं और इस सिलसिले में जल्द एक सरकारी बयान जारी किया जाएगा, जबकि इसराइल को इस समझौते पर अभी अपनी राय देनी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में

अर्चना करते हैं। पर वहां भी कल शाम भारी वर्षा के कारण प्रशासन ने ये फैसला किया है कि फिलहाल बालतल के मार्ग से भी तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो फिलहाल आज अभी ना ही तो पहलगाम के मार्ग से आगे यात्रा जा रही है, ना ही बालतल के मार्ग से आगे यात्रा जा रही है। दोनों ही मार्ग जो हमारे मुख्य मार्ग है जहाँ से तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, नुनवन बेस कैंप पे हमारे तीर्थयात्री जो हैं वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल गेट को जब पार करते हैं, RFID कार्ड हासिल करने के बाद आगे पहुँचते हैं, पंचतरणी शेषनाग वगैरह क्रॉस करने के बाद, संगम पहुंचने के बाद वो पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। 48 किलोमीटर लंबा रास्ता बार बार हम आपसे कहते हैं क्योंकि पारंपरिक मार्ग है और अभी फिलहाल वो मार्ग जो है तीर्थयात्रियों को वहां से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही क्योंकि उस मार्ग पर यात्रा ट्रैक्स पर मरम्मत का काम चल रहा है। और कल शाम जो भारी वर्षा हुई थी उसकी वजह से बालतल के मार्ग से भी आज प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी है। तो कल शाम तक जितने तीर्थयात्री वहाँ पहुँचे थे उनमें से 5,064 ऐसे तीर्थयात्री जो शाम 5 बजे तक बालतल के मार्ग से वापस लौटे थे, पवित्र गुफा पे उन्होंने माथा टेका था और वो शाम 5 बजे तक बालतल एक्सेस कंट्रोल गेट वापस पहुँचे थे और वो उन्होंने वहीं रात्रि विश्राम

श्रोताओं, आज श्री अमरनाथ जी यात्री 2026 के 24वें जत्थे को भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से प्रातः 2:45 पर रवाना कर दिया गया। आइए चलते हैं सीधे भगवती नगर जम्मू, जहां से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब हमारे साथ फोन लाइंस के जरिए जुड़ते हैं। आइए।

है, जहाँ श्रद्धालु कश्मीर घाटी से वापस लौटकर दर्शन कर वापस लौट रहे हैं अपने घरों को, वैसे ही लगातार यहाँ से मौसम की परिस्थितियों के बावजूद भी मैनेजमेंट के अनुसार श्रद्धालु जो है बराबर घाटी पहुंच भी रहे, और ये लगातार रवाना होकर प्रसन्नता के साथ अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। श्रावण के इस महीने में श्रद्धालु यहाँ जम्मू के मंदिरों में भी पूजा अर्चनाओं में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस दौरान श्रावण मास के पहले दिन कल यहाँ शिव स्थलों पर बाबा बर्फानी की गूंज और जयकारे दिन भर सुनाई दी।

विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्वृधे।

इसके अलावा आप हमें DTH पर सुन रहे हैं, वेज OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं और आप हमें सुन सकते हैं यूट्यूब के आराधना चैनल और न्यूज़ ऑन AIR के आराधना सर्विस पर। श्रोताओं आइए गायत्री मंत्र सुनते हैं।

श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें डीटीएच पर सुन सकते हैं। हम उपलब्ध हैं वेज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब की आराधना चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना सर्विस पर भी आप हमें सुन सकते हैं। श्रोताओं, श्यामाना जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में हम आपके साथ यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स शेयर करते हैं। प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है और हम कोशिश करते हैं कि हम

हुई थी और आज यात्रा का 29वां दिन है। आंकड़ों के अनुसार इन 29 दिनों में 446,788 तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में जाके माथा टेका है और पवित्र शिवलिंगम के दर्शन प्राप्त किए हैं। श्रोताओं, जैसा कि मौसम विभाग ने पूर्व सूचना दी थी कि वर्षा होगी और आज हल्की हल्की वर्षा हो रही

है, कल शाम बालतल मार्ग पे वर्षा के कारण बालतल के मार्ग से भी आज यात्रा को नहीं आगे जाने दिया जा रहा है, और किसी भी तीर्थयात्री को आज आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है दोनों ही मार्गों से। पहलगाम के पारंपरिक मार्ग पर यात्रा ट्रैक्स की मरम्मत चल रही है और बालतल के मार्ग में कल शाम वर्षा की वजह से प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि आज बालतल के मार्ग से भी तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि आज जो तीर्थयात्री भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से रवाना हुए थे वो 12 बजे के आसपास कश्मीर घाटी पहुंच जाते हैं, पांधा चौक वाले ट्रांजिट कैंप में रुकते हैं रात्रि विश्राम के लिए, और उसके बाद उन्हें बालतल की मार्ग की ओर आगे रवाना कर दिया जाता है। श्रोताओं, आपको बताते चले कि आज राष्ट्रीय राजमार्ग स्थानीय ट्रैफिक के लिए बंद है, पर हमारे जो तीर्थयात्रियों का जो काफिला है उन्हें आगे जाने की अनुमति दी गई है, और 1605 तीर्थयात्री आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर की ओर रवाना हो चुके हैं। वो सुबह 2:45 बजे के आसपास वहां से रवाना कर दिए गए थे और अभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनका कारवां रवाना हुआ है। श्रोताओं, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि

से आज तीर्थ यात्रा को फिलहाल आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि यात्रा ट्रैक्स पर मरम्मत चल रही है। इस वजह से प्रशासन का ये फैसला कि फिलहाल आज तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप जहाँ ठहरे हैं वहाँ आपकी रहने खाने पीने और चिकित्सा की सुविधाएं रखी गई हैं, तो आप एक दूसरे से मिलिए जुलिए, एक दूसरे से बातें शेयर कीजिए और बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा में जाने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि बाबा बर्फानी का जब बुलावा आएगा तो आप वहाँ ज़रूर पहुँच जाएंगे। श्रोताओं, कुछ ही देर में हम हमारे एक और संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे फ़ोन लाइन्स के ज़रिए, जो हमारे श्रीनगर

0: शेयर करते हैं। जी इमरान
1: जी बिल्कुल, जैसा कि मुसलसल हम जो श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप से ये अपडेट कर रहे हैं यात्रियों की जो अराइवल है या यहाँ से डिपार्चर है, और कल शाम को यहाँ श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ जी यात्रियों का एक जत्था पहुंचा था जिसमें मेल फीमेल और इसके अलावा साधु साध्वी शामिल थे, और आज वो श्रीनगर से बालतल की तरफ रवाना किए गए और अमरनाथ जी यात्रा के दर्शन के लिए। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हर दिन यहाँ अमरनाथ जी यात्री पहुंच रहे हैं, और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ जी यात्रियों के जो मुख्तलिफ या अलग अलग जो जत्थे हैं कानवाई में यहाँ पहुंच रहे हैं, और

एडवाइजरीज में कहा जा रहा है कि वो यात्री उन SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उन्हीं एडवाइजरीज को लेके ही वो अपना अपनी जो यात्रा है उसको उसके हिसाब से ही अपनी यात्रा शुरू करें। और अभी हम देख रहे हैं कि यात्री जो है प्रशासन के इन SOPs को भी फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही ये कि जो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सुविधाएं रखी गई है उनको लेके भी वो काफी खुश हैं। और जहां तक मौसम का ताल्लुक है, आज रात श्रीनगर शहर में बारिश हुई और इवन के सुबह काफी बारिश हो रही थी, लगभग 4 बजे से सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक, लेकिन उसके बाद बारिश रुकी और इस वक्त बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम बिल्कुल साजगार है। उम्मीद ये की जा रही है कि मौसम ही बेहतर हो और ये जो यात्रा है ये पुरमन तरीके से और पीसफुल तरीके से खत्म हो जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि यात्रा को लेके जो छड़ी मुबारक है वो भी इस वक्त एक दिन पहले ही यानी परसों यहाँ श्रीनगर के दशमी अखाड़ा या मंदिर पहुंचाई गई और यहाँ से उसे फिर पहलगाम रवाना किया गया, और अभी उसके शेड्यूल के मुताबिक अलग अलग जगहों पर उसका दर्शन किया जाएगा और बाद वो श्रीनगर भी पहुंच रही है दोबारा से, जहाँ गणेश मंदिर और शंकराचार्य मंदिर और दूसरी जगहों पर दर्शन के लिए उसे लिया जाएगा। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अभी यात्रा काफी खुश असलूबी के साथ या पूरा मंत्री के साथ जारी है। वहीं प्रशासन का भी ये मानना है कि लगभग 4.5 लाख जो यात्री हैं उनमें अभी तक पवित्र गुफा का दर्शन किया है, और ये सबसे अच्छी और खूबसूरत बात है इस यात्रा को लेकिन जो रिसेंट

0: रात ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं।

कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उपलब्ध है आपके संग। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज प्रातः प्रथम आधारश्वर भगवती नगर से कड़ी सुरक्षा के बीच कुल मिलाकर 1605 तीर्थयात्रियों को 54 छोटे बड़े वाहनों में घाटी की ओर प्रस्थान कराया गया, जिनमें पुरुषों की संख्या 1215, महिलाएं 335, साधु 48, साध्वी 5, बालक 2, और ये यूं कुल मिलाकर ये संख्या बन जाती है 1605।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। आपको बता दें कि जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि दोनों मार्गों से जो है यात्रा जाती है, और यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि चाहे आप पहलगाम मार्ग से यात्रा करें या बालताल मार्ग से, दोनों ही रास्तों पर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और प्रशासन की और से विभिन्न सुविधाएं जो है व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हर मुख्य पड़ाव पर विश्राम शिविर, मेडिकल असिस्टेंस, पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स, सुरक्षा कर्मचारी और जानकारी केंद्र जो है रखे गए हैं। यात्रा के दौरान कई सेवा समितियां और धार्मिक संगठन निशुल्क लंगर सेवा भी चलाते हैं। सुबह की गर्म चाय हो, खिचड़ी दाल और रोटी का भोजन हो या फिर हल्का फुल्का जलपान, हजारों सेवादार पूरी श्रद्धा के साथ दिन रात यात्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। यही सेवा भाव श्री अमरनाथ यात्रा को और भी विशेष बनाता है। प्रकृति का सम्मान करें, यही आपसे अनुरोध है। ये हिमालय जो है हमारी धरोहर है, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, कचरा इधर उधर ना फेंकें, और हम ये कहेंगे कि जो पवित्रता हम बाबा बर्फानी के दरबार में देखने आते हैं, उस पवित्रता को बनाए रखना भी हम सब की सांझी जिम्मेदारी है।

बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, न्यूज़ ऑन एआईआर, डीटीएच वेव्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा भी आप हमारे संग जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, अब से बस कुछ ही क्षणों में आप आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी और हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश

0: जिगमे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालछन जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालछन जोवा ने कहा कि 1966 में अपने स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24,361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Rajya Sabha has been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. The Lok Sabha has also been adjourned till 12 noon on the same issue. When the Rajya Sabha assembled at 11 a.m., several union ministers laid the papers on the table of the House. After that, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the zero hour. Several members raised issues of urgent importance. However, the opposition members began protest with sloganeering, pressing for their demands. As the pandemonium continued, the Chairman adjourned the House for the day till Monday.
2: The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, 3rd August 2026.
1: Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Minister of State for Personnel and PMO, Dr. Jitendra Singh said this issue touches every citizen of India and has a stake with every citizen of this country.
3: Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children. And hence, this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. If there are any suggestions for improvement, I'll be taking note of it. This bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country.
1: Initiating the discussion, Leader of Opposition Mallikarjun Kharge said the proposed amendments will not be effective to curb malpractices in the public examinations. Prime Minister Narendra Modi has said the government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, for the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk.
4: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिला करके चले।
1: Family members of Delhi police personnel injured during the 20th July protest at Jantar Mantar have alleged that police officers were deliberately targeted during the demonstration. Addressing a press conference in New Delhi today, they claimed that personnel deployed on the front line were surrounded, pelted with stones, and physically assaulted by violent elements in the crowd. The

0: Family members also claimed several police personnel sustained serious injuries during the incident. They urged the authorities to ensure strict action against those responsible for the alleged attacks and called for greater protection for police personnel deployed during public demonstrations. The Ministry of Ayush and India AI has signed a Memorandum of Understanding MOU to promote artificial intelligence-driven innovation across the Ayush sector. The Ministry of Ayush said the MOU aims to harness emerging technologies to strengthen research, digital health, capacity building, and innovation in traditional medicine. Protests continued in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, following a brutal crackdown by Pakistani security forces on civilians earlier this week, which left more than 40 people dead. Local authorities in the occupied region have now begun targeting women protesters demanding basic rights. At the Commonwealth Games, Indian weightlifter Lovpreet Singh won a silver medal in the men's 110-kilogram category, while Seema Kaliramna bagged a bronze medal in women's discus throw at Glasgow last night. Australia continued to lead the standings with 110 medals, while India were 10th with 17 medals on day 8. And with that, we end this news bulletin.
1: बने हुए आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, आराधना चैनल के माध्यम से भी आप हमारे संग बने हुए हैं। DTH एवं न्यूज़ ऑन AIR के संग भी जो है आप बने हुए हैं, आप इसके द्वारा भी हमारे संग जुड़ सकते हैं और इसके अलावा भी उसके OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
2: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल डीटीएच और हमारी ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। मैं आपकी उद्घोषक पजमान फेरोज आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी शाम के 6 बजे तक।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं आए आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, आपको बता दें कुछ ही क्षणों में आपको हम आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा है कि वो विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमापार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि

चाहते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: विशेष प्रसारण श्रेया मनाज यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आए आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में समाचार समाप्त करेंगे।
1: बुलेटिन खत्म होता है, नमस्कार।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। लोकसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। कई मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिले एतराज मवाद फैलाने की बिना पर मेटा इंडिया के अहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। CJP के एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले दिल्ली पुलिस के अमले के कुंबे वालों ने इंसाफ की मांग की है और मुजाहरों के दौरान और ज्यादा तहफ़ देने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई जारी रखे हुए है। 120 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इत्तला मिली है और उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। 13 अजला में लगभग 8 लाख अफराद बुरी तरह मुतासर हुए हैं। अब खबरें तफसील से। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई बहुत से मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज की वजह से पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर भी एहतजाज कर रही थी। जब दोपहर को लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो पैदाइश और अमवात से मुतालिक रजिस्ट्रेशन का तरमीमी बिल 2026 गौर खोज के लिए पेश किया गया और शोरगुल के दौरान किसी बहस के बगैर मंजूर कर लिया गया। बिल पेश करते हुए उम्र दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने कहा कि बिल का मकसद 1969 के मुतालिका कानून में तरमीम करना है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कार्रवाई में रुकावट डालने और बहस में हिस्सा न लेने पर अपोजिशन की नुकताचीनी की। उन्होंने कहा कि बहस के लिए खातिर खा वक्त रखा गया था। बिल मंजूर होने के बाद ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई और इजलास फिर से 3 अगस्त को होगा। पेश एक रिपोर्ट।
3: ये नया बिल ताखिर शुदा रजिस्ट्रेशन से मुतालिक दफात को मजीद सख्त बनाने और पैदाइश नीच अमवात के वाकयात की बरवक्त रिपोर्टिंग की हौसला अफजाई की गरज से पेश किया गया है। बिल में इस बात की गुंजाइश है कि अगर पैदाइश या अमवात के वाक़े की रिपोर्ट 1 साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज कराई जाती है तो उसे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही दर्ज किया जाएगा और पैदाइश या मौत के वाक़े की तस्दीक के बाद ही इसका इंदराज किया जाएगा और 2 साल से ज्यादा अरसे के बाद रजिस्ट्रार के यहाँ इंदराज कराने की सूरत में इसे फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म के बाद ही रजिस्टर किया जाएगा। पैदाइश और अमवात का इंदराज कराना लाजमी है और इसके लिए जारी सर्टिफिकेट किसी भी फर्द को कानूनी शनाख्त फराहम करता है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
2: इससे पहले जब लोकसभा की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई तो अपोजिशन मेंबरों ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर नारे लगाए और वजीर दाखिला अमित शाह से बयान देने का मुतालबा किया। स्पीकर ओम बिरला ने मेंबरों से अपील की कि वो सवालों के वक्फे में खलल न डालें। उन्होंने कहा कि यह सरकार से जवाब हासिल करने के लिए मेंबरों के पास सबसे अहम मौका होता है। उन्होंने कहा कि ऐवान के अंदर कतबे और बैनर दिखाना पार्लिमानी रिवायात और जाब्तों के खिलाफ है।
4: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
2: शोरगुल जारी रहने पर स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई दोपहर तक मुलतवी कर दी। जब ऐवान का इजलास फिर से शुरू हुआ तो पैदाइश और अमवात से मुतालिक रजिस्ट्रेशन का तरमीमी बिल शोरगुल के दौरान मंजूर किया गया, जिसके बाद कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। 0 आवर के दौरान अपोजिशन के रखना डालने के सबब राज्यसभा की कार्रवाई भी

तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले मरकजी वजीरों ने ऐवान में जरूरी दस्तावेजात पेश किए और इत्तला नशियात के वजीर ममलकत डॉक्टर इल्मुरुगन ने फर्जी खबरों से मुतालिक सिफारिशात की अमल आवरी पर बयान दिया। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने बहस से बचने और पार्लियामेंट की कार्रवाई में रुकावट डालने पर अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के तर्ज अमल से ऐवान की अजमत और वक़ार को नुकसान पहुंचता है और जमहूरियत एक मजाक बनकर रह गई है। शोरगुल जारी रहने पर राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। झारखंड से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने एहतजाज किया, जो JPSC का पेपर मुबैना तौर पर लीक होने की CBI से तफ्तीश कराने की मांग कर रहे थे। खवातीन और बच्चों की तरक्की के महकमे की वजीर और कोडरमा से बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट अन्नपूर्णा देवी ने इल्जाम लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जेर क्यादत सरकार में बहुत से पेपर मुबैना तौर पर इफ्शा होने की खबरें मिलती रही हैं, जिनमें JPSC का पेपर भी शामिल है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मोहतरमा अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड के नौजवान इस मामले पर एहतजाज करते रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम ने मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का दौरा करेंगे, जहां वो बुनियादी ढांचे, सेमीकंडक्टर, बिजली और शाहराहों के अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में वो भोगापुरम के मकाम पर 5,600 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे और विशाखापट्टनम में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत रियासत की पहली सेमीकंडक्टर तैयार करने वाली फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखेंगे, जिस पर 460 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। वजीर आजम अनंतपुरम में 9,900 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के पावर ग्रिड ट्रांसमिशन के कई प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखेंगे। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम ने मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने की बिना पर मेटा इंडिया के अहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सोशल मीडिया चलाने वाले कई दूसरों के खिलाफ भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसी तरह के काबिल एतराज मवाद की वजह से ये FIR दर्ज की गई है। BAP के सोशल मीडिया शोबे की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद ये केस रजिस्टर किया गया है। साइबर क्राइम के DCP अरविंद बाबू ने तस्दीक की है कि FIR दर्ज कराई गई है और इस मामले की तफ्तीश जारी है। तेलंगाना BJP ने मुतालबा किया है कि इस तरह का मवाद फैलाने के मुबैना जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। BJP के तर्जुमान NV सुभाष ने कहा कि पार्टी ने साइबर क्राइम पुलिस से राबता कायम किया है और वाजे तौर पर कहा है कि इजहार राय की आज़ादी को बेजा और किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कानून के तहत जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आयुष की वजारत और इंडिया AI ने आयुष के सेक्टर में मसनूई जहानत AI पर मबनी इख्तिरात को फरोग देने के लिए एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। इस मुफाहमत नामे का मकसद तहकीक, डिजिटल सेहत, अद्वियाती पौधों और दवाओं के बंदोबस्त के शोबों को मसनूई जहानत के जरिए मजबूत बनाना है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पुरामन मुजाहिरीन पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एहतजाज के शुरू होने के बाद से अब तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 120 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। ताज़ा तरीन वाकयात में रावलकोट, मीरपुर और कोटली में खवातीन मुजाहिरीन पर मुबैना फायरिंग शामिल है, जिसकी वसी पैमाने पर मजम्मत की जा रही है और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक ताज़ा खदशात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में सिविलियन अफराद के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई के बाद जिसमें 40 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए, एहतजाज का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी हुक्काम ने अब बुनियादी हकूक का मुतालबा करने वाली खवातीन मुजाहिरीन को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। बांधों में शिगाफ पड़ने और दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने की वजह से रियासत के वसीतर इलाके मुतासिर हैं। बालाई इलाकों में बारिश कम होने के बाद महानदी दरिया बतदरीज मामूल पर आ रहा है, लेकिन बैतरानी और इसकी मुआविन नदियों के बारे में नए खदशात पैदा हो गए हैं। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि रियासत के 57 ब्लॉकों में तकरीबन 8 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जबकि हुक्काम इमदादी बचाव और निगरानी की
कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने पैदाइश और अमवात की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। कई मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक

0: लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी

0: मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
1: सदन की गरिमा के साथ सवाल किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
2: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट है उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छूरा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप

0: और सोशल मीडिया हैंडल @HIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लाल झंझोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परम्पराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
1: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आनंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आनंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसटीआरएफ की 33 प्लाटू और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर और FM पहलगाम 100.1 MHz पर। न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल DTH और HD प्लेटफॉर्म वेव्स

पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, आपकी यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और सुखद रहे। सफर के दौरान सभी नियमों का पालन करें, प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का सम्मान करें और अपने सामान का ध्यान रखें।

0: श्रोताओं जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के संग, जो आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम पर। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता रामबन से मोहम्मद तस्कीन साहब। जी तस्कीन साहब।
1: जी शुक्रिया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के हवाले से ये खबर कि आज सुबह से ही इस पर काम चल रहा है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में और रामबन डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ मुकामात पर जो पिछली बारिशों की वजह से जो हाईवे को नुकसान पहुंचा है और उस वजह से वहां पर जो रेगुलर ट्रैफिक होता है, नॉर्मल ट्रैफिक का उसे इफेक्ट पड़ता था, तो उसी को ठीक करने के लिए जो कल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उधमपुर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन के ऑफिस से एक हुक्म जारी हुआ, जिसमें ये कहा गया कि आज यानी फ्राइडे के लिए हाईवे बंद रहेगा, कोई ट्रैफिक चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और वो मतलब उस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और उधमपुर और काजीगुंड से आगे किसी भी ट्रैफिक को बढ़ने की इजाजत नहीं है। इस दौरान जो शरी अमरनाथ यात्रा का आज जो काफिला था, जम्मू से एक ही काफिला था जो कश्मीर की तरफ आया बालतल के रास्ते, ये 24वां बैच जो था, तो इसमें 54 जो गाड़ियां थी और इसमें जो 38 बसें थी और बाकी मोटर कार्स वगैरह थे, तो वो सभी जो 1215 जो ये जो यात्री थे वो अपने अपने जो मतलब उनका जो डेस्टिनेशन था बालतल, तो उस तरफ रवाना किया गया। बनहाल में उनको सुबह नाश्ता किया गया। करीबन 8:30-9 बजे ये आज यहाँ से निकल कर कश्मीर इंतजामिया के हवाले किया गया और वहां से इनको जो मंजिल मकसूद है जो पवित्र गुफा के दर्शन की तरफ ये जा रहे हैं, तो उनको वहां तक पहुंचाने के लिए कश्मीर इंतजामिया पार्टी जो उनका वो निजाम रहेगा अब आगे के लिए।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: जी शुक्रिया।

0: श्रोताओं जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के संग, जो आप FM बालतल और FM पहलगाम पर समाप्त कर रहे हैं। पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ भगवती नगर से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब साहब। जी जावेद साहब
1: जी, बाबा बर्फानी की पावन यात्रा का सिलसिला यहाँ जारी है। जम्मू निवास स्थान से लगभग अब हर दिन श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो रहा है और बाबा बर्फानी की इस यात्रा का हिस्सा बन रहा है। वहीं जम्मू में जहां श्रावण मास के शुरू होने की शुरू हो गया है और उसकी वजह से लोग जो हैं वो यहाँ के स्थानीय मंदिरों, यहाँ के स्थानीय धर्म स्थलों में खूब नजर आ रहे हैं, क्योंकि श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही यहाँ मंदिरों और धर्म स्थलों पर पूजा अर्चनाएं हो रही है और लोग जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से, न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि स्थानीय लोग भी इन मंदिरों में खासे देखे जा सकते हैं। इस दौरान यहाँ उमस और गर्मी लगातार बराबर जारी है। जम्मू में हल्की सी सुबह बारिश भी हुई थी, लेकिन उसके साथ ही फिर बीच में धूप निकल आई, बीच में बादल फिर आ गए, तो गर्मी और

0: में किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं है और इस दौरान श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों के भी पसीने छूट रहे हैं और शहर के अंदर जो है श्रद्धालु घूमते, खरीदारी करते, स्थानीय व्यंजनों का मजा लेते भी नजर आ रहे हैं। वहीं भगवती नगर निवास स्थान के में तीर्थ यात्री तवी के तट की जो ठंडी हवाएं हैं उनका भी लुत्फ उठा रहे हैं और यहाँ निवास स्थान भगवती नगर में लंगर, योगा, मनोरंजन, भजन, भक्ति संगीत, खास तौर पर आज से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं इनमें हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि श्रावण मास का जो ये धार्मिक एक
1: जी
0: बड़ी मतलब उसकी एक धार्मिक भी बड़ी महत्वता है। तो
1: जी
0: इन इन 4 सोमवारों में जो अब आने वाली 4 सोमवार हैं इनमें खास तौर पर पूजा अर्चनाएं होंगी और इस दौरान जो है पवित्र श्री अमरनाथ जी की पावन दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु भी लगातार जम्मू पहुंच रहे हैं। यहाँ से वापस अपने घरों को रेल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से बराबर लौट रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। वहीं बाबा बर्फानी की आस्था के इससे जुड़े श्रद्धालु लगातार जम्मू कश्मीर भी पहुंच रहे हैं और यहाँ पंजीकरण की प्रक्रियाओं को पूरा कर बेस कैंप भगवती नगर की तरफ उन्हें प्रस्थान करना पड़ता है और यहाँ से लगातार रवाना होकर प्रसन्नता के साथ अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। और खास तौर पर इस महीने में श्रद्धालु यहाँ जैसे मैंने कहा कि मंदिरों की और यहाँ के जो धर्म स्थल हैं खास तौर पर श्री अम्बेश्वर मंदिर, आप शंभू मंदिर, पीर खोशे मंदिर, पंचवक्तार मंदिर और शहर के अन्य मंदिर भी जो हैं उनमें पूजा अर्चनाएं शुरू हो गई हैं। शाम को आरतियां होती हैं उनमें भी श्रद्धालु खुलकर हिस्सा लेते हैं। तो एक शहर में एक अच्छा खासा माहौल है तीर्थ यात्रा का। इसके साथ ही जो माता वैष्णो देवी की यात्रा के श्रद्धालु है वो भी लगातार शहर के अंदर देखे जा सकते हैं। और कुछ जो पवित्र श्री बाबा अमरनाथ जी की तीर्थ यात्री हैं वो कई बार जिन्हें अभी डेट फाइनल नहीं होती है वो श्री माता वैष्णो देवी के द्वार की तरफ भी निकलते हैं। तो ये एक सिलसिला जो इस शहर में बना हुआ है क्योंकि मंदिरों का शहर है और खास तौर पर इस महीने की एक धर्म धार्मिक जो इसकी इम्पोर्टेंस भी है उसकी वजह से जो है वो शहर में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और जो लगातार यात्रु यहाँ पहुंच रहे हैं वो इस खुशी में पहुंच रहे हैं कि उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। और जिस तरह से लगातार जिस रणनीति के साथ जो यहाँ मैनेजमेंट है
1: जी
0: जिसमें श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, उसके अलावा जो जिला हेडक्वार्टर्स हैं या राष्ट्रीय राजमार्ग की अथॉरिटी है या बालटाल मैनेजमेंट है, सारे मिलकर इस जो पवित्र यात्रा है उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक रणनीति ये भी ली जाती है, कुछ समीक्षाएं भी होती हैं। उस समीक्षाओं में कई बार आज की डेट में सुबह जल्दी टाइमिंग कर दी गई है, जहां पहले 4 बजे श्रद्धालुओं को यहां से भेजा जाता था अब 2 से 2:30 बजे के बीच में भेजा जाता है ताकि उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी मौसमी परिस्थिति का सामना न करना पड़े, रास्ता बंद न हो किसी तरह से, क्योंकि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसमें कहीं कहीं जिलों में बारिशें भी होंगी, कहीं भूस्खलन भी होंगे। लेकिन अभी तक आज हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग बंद भी था स्थानीय ट्रैफिक के लिए, लेकिन पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा का ये काफिला जो है वो लगा वो बराबर यहाँ से आज निकला भी, रवाना भी हुआ और बालटाल की तरफ भी जा रहा है। हालांकि आगे अभी मौसम की वजह से यात्रा अभी बंद है, बालटाल के मार्ग से अभी बंद है यात्रा। जैसे ही मौसम खुलेगा, क्योंकि अभी कश्मीर में उस तरह की बड़ी कोई भविष्यवाणी नहीं है, जम्मू संभाग में इस तरह की भविष्यवाणी थी, लेकिन जो सावन का असर होता है वो कई बार जम्मू और कश्मीर दोनों में देखा जाता है, जिसकी वजह से कई बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये डिसीजन लिया जाता है, फैसला लिया जाता है कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए और तभी उनकी रवानगी को की जाए जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है और रास्ता जो ट्रैक है बालटाल से होके पवित्र गुफा तक का वो बिल्कुल ठीक है। तो ये पूरी एक रणनीति, एक मैनेजमेंट के तहत ये सारी तीर्थ यात्रा चल रही है और यहाँ भी जम्मू में अब पिछले 1 महीने से 1 महीने के ज्यादा हो गया अक्सा, इस दौरान जो एक मैनेजमेंट प्रशासन ने बनाई है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बनाई है, उसके अलावा जो स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं इसके साथ, तो वो एक पूरी कॉपरेशन के साथ, एक मैनेजमेंट के साथ इस तीर्थ यात्रा को बेहतर बनाने के लिए, इसको और उसमें आसानियां पैदा करने के लिए, श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, श्रद्धालु पूरी तरह से चाहे कम संख्या में जरूर जा रहे हैं अपने श्रद्धालु, लेकिन बराबर यहाँ पहले बेस कैंप से रोजाना रवाना हो रहे हैं बाबा श्रद्धा बाबा बर्फानी की इस यात्रा में। तो एक अच्छा सिग्नल भी है, एक अच्छी खबर ये भी है कि किसी भी तरह से प्रशासन ने जानबूझकर रोकने की कोशिश नहीं की, और बाजाबता प्रशासन ने इस बात को देखा कि किस तरह से जो है जो यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा को बनाते हुए, उनकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, उनकी आसानियों को बनाए रखने के लिए उन्हें एक बेहतर मैनेजमेंट के साथ रवाना किया जाए, और किसी भी तरह से कोई कमी सुरक्षा प्रबंधनों को लेकर, या जो यहाँ पहला निवास स्थान भगवती नगर है उसमें किसी तरह से कोई कटौती नहीं की गई है, किसी भी तरह से चिकित्सा का, खाने पीने का, भोजन का, योगा का, हर एक सेंटर वहाँ अंदर है, और बाजाबता ट्रेनिंग भी होती है इस विपरीत मौसम में, जब मौसम ठीक ना हो उसमें खास तौर पर किन किन बातों का ख्याल रखना है उसकी खास तौर पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, और श्रद्धालुओं को तैयार भी किया जाता है कि वो इस मौसम में किस तरह से प्रशासन के साथ मिलकर एक काफिले की सूरत में बेहतर तौर पर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।

0: विशेष प्रसारण श्रेया मनाज यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे अनंतनाग से संवाददाता हमारे एस तारिक साहब। आइए जानते हैं क्या कुछ लेके अपडेट्स आए हमारे साथ यात्रा के हवाले। जी तारिक साहब,
1: बहुत शुक्रिया जी। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के प्राचीन अमरेश्वरी मार्ग पहलगाम से श्री अमरनाथ जी के पवित्र गुफा तक सुबह के समय मौसम सामान्य तौर पे उबर आलू था। इस समय विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की सी मध्यम वर्षा हो रही है, जबकि रात के समय कहीं कहीं हल्की बरसात जारी रहने का अनुमान है। इधर शिशनाग, महागुणस्ता, पंचतरणी और श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा सीमित ऊंचे वाले क्षेत्रों में नमी से भरपूर और दुर्गम मौसमी स्थितियां बनी हुई है। इन क्षेत्रों में घी धुंध के कारण दृष्टि कम हो सकती है। लगातार वर्षा से हुए नुकसान के मद्देनजर पहलगाम मार्ग पर मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। इस कारण ये मार्ग आज भी आरजी तौर पे बंद रखा गया है। इस समय श्री अमरनाथ जी यात्रा के आवागमन व्यवस्था क्यूल बालतर मार्ग से सुचारू रूप से जारी है। इस क्रम में जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 54 छोटे बड़े वाहनों पर मुश्तमिल 1605 श्रद्धालुओं का नया जत्था बालतल मार्ग पहुंच चुका है। इस जत्थे में 1215 पुरुष, 335 महिलाएं, 38 साधु, 5 साध्वी और 2 बालक साधु शामिल थे। 57 दिनों की इस पवित्र यात्रा के दौरान कल कुल मजीद 5211 शिव भक्तों ने श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा में दर्शन प्राप्त किया था। इसके साथ ही यात्रा के आरंभ से अब तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या बढ़कर 4,46,788 हो गई है। इधर पहलगाम के नुनवर आधार शिविर, शिशनाग और पंचतरणी क्षेत्रों में भी इस समय कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं है। ताहम यात्रा मार्ग और सभी आधार शिविरों पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और आवश्यक सहूलियात की फराहमी के लिए बराबर तैनात है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर पवित्र गुफा तक 3 सती सुरक्षा घेरे कायम किए गए हैं। सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहकर यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने में मसरूफ है। जी
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अपडेट साझा करने के लिए।
1: धन्यवाद।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, खराब मौसम या रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट होने पर कृपया प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और ऑफिशियल जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तमाम यात्रियों से निवेदन है कि अगर आपको किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे हेल्पलाइन के द्वारा। हमारी हेल्पलाइन नंबर है

9596990954, 9596990954। इसके अलावा हमारे पास टोल फ्री नंबर से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जम्मू के लिए है 1800-180-7198, 1800-180-7198।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाज यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक ज़रूरी सूचना उन सभी भक्तों के लिए जो भी यात्रा की योजना बना रहे हैं, यात्रा पर निकलने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। बिना वैलिड परमिट के यात्रा की अनुमति नहीं है। नियम और प्रक्रिया का के बारे में

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तमाम यात्रियों से निवेदन है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फ़ोन लाइन के द्वारा। हमारी फ़ोन लाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 9596990954, 9596990954। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर भी नोट कर लीजिए, जम्मू के लिए टोल फ्री नंबर है 1800180 7198, 1800180 7198। श्रीनगर के लिए है 1800180 7199, 1800180 7199। ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, akashvanibaltal@gmail.com, akashvanibaltal@gmail.com। शन शन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लगातार वर्षा और प्रतिकूल मौसम के चलते प्रशासन ने आज ये निर्णय लिया है कि बालतल मार्ग से अमरनाथ यात्रा को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि भोलेनाथ के जो भक्त है वो सुरक्षित रहे, सलामत रहे और उनको किसी भी प्रकार की दुविधा का सामना न करना पड़े। आपसे निवेदन है कि संयम बनाए रखें और धैर्य से काम लें। श्रोताओं, यात्रा पुण्य कब आरंभ होगी इसकी जानकारी आधिकारिक माध्यमों के द्वारा ही दी जाएगी।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे साथियों द्वारा बालतल में रिकॉर्ड की गई आरती आप तक पहुंचाते हैं।

0: you.
1: श्रोताओं, आप बाल्तल में रिकॉर्ड की गई आरती समाप्त कर रहे थे। इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बाल्तल में हमारी साथी इंजीनियर्स थे सजाद अहमद गोरकू, मंजूर अहमद नजार और शौकत अहमद। मैं आपकी साथी उद्घोषिका पजमान फेरोज़। इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक वानी और श्री गुलाम रसूल आखून। यात्रा का विशेष प्रसारण लिए हम आपकी सेवा में कल प्रातः 6:53 पर फिर से उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजाकर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

करता। बे हस्तरूपी कमल थी, अक्षमाला मणका निमाला तथा कमंडल निधान करनारा सर्वोत्तम ब्रह्मचारिणी देवी हमारा ऊपर प्रसन्न था। ये बे शब्दों खास समझवा जेवा, पहलू छे अक्षमाला, ए छे वर्णमाला कि जेमा अ थी माड़ी ने क्ष सुधीना बधाज स्वरूपो वर्णोना अने आना प्रतिनिधि रूप ये मणका ये धरावनारी माला ये अक्षमाला अने कमंडल ब्रह्मचारिणी जी नो सर्वशास्त्रोना सार अने अमृत नो ये प्रतीक अक्षमाला। आ प्रकारनी माला ने अनेक देवदेवियों जेवा के ब्रह्माजी अग्नि

हर था। ए भगवती दुर्गा नो जय था। ए दुर्गा पार्वती जी संकट अने पीड़ा नो विनिवारण करनार छे, मुश्किली लावनार आपत्तियोनु निवारण करनारा, दुर्गम नामना राक्षस नो नाश करनारा, कष्टपूर्वक नी साधना थी सिद्ध थनारा, मुसीबतोना ए संहारक छे, अभाग्या लोकोनो उद्धार करनारा, विपत्तियों ने हणनारा, दुर्बोध दुष्ट ज्ञानना निवारक, दुर्ज्ञेय एवा ज्ञानने अपनारा, विपत्तिजनक दैत्योना जगतने माटे दावानल देवा छे, नेथी दुर्ग दैत्य लोक दवानला कहेवाय छे। ए माताजी दुष्प्राप्य छे, एमनो प्रकाश कष्टपूर्वकनी तपश्चर्याथी पण दुर्गम होय छे, प्राप्त करवा कठिन छे, आत्मस्वरूप छे, मुश्किलजनक मार्गमां ए उपाय बतावनारा छे। दुर्गम विद्या स्वरूप अने दुर्गम साधनाथी तमनो आश्रय मेळवी शकाय छे एवा ए परांबाने अमे प्रणाम करीए छे। वळी

पठे सर्व भयान् मुक्तः भविष्यति न संशयः। अर्थात कठिन के दुष्प्राप्य ज्ञानना स्वरूपे रहेला, दुर्गम ध्यान थी प्रकाशित थनारा, जमनी माया मोह अकड़े ए दुर्गम मार्ग में रहेला दुष्प्राप्य अर्थना स्वरूप वाला दुर्गा देवी ने अमे प्रणाम करीश। तोज साथे दुर्गम दैत्यना संहारक, विकट आयुधन धारण करनारा, अविचिन्त्य अंगो वाला, दुर्गम मार्गे गति करनारा होवाथी दुर्गम्य मुश्किली थी प्राप्त थनारा,

बाल कृष्ण के प्रेत में तन्मय हर गोपी दिन रात कान्हा के ही सपने देखती है। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल संग गोकुल में गैया चराते, बंसी बजाते, माखन चुराते और गोपियों संग रास रचाते हुए मनमोहक लीलाएं करता है। यमुना किनारे सांझ सकारे जब गोपाल मुरली की मधुर मधुर धुन छेड़ता है, तब गोपियां सुध बुध खो बैठती हैं। कृष्ण भक्त गोपी राधा नंदलाल से प्रीत तो कर बैठी, मगर उसे चिंता सताती कि कहां त्रिभुवन का स्वामी सर्वव्यापी नारायण और कहां वो ब्रज की एक साधारण सी गोपी। वो ध्यान में मग्न बंसी भजैया से पूछती रहती, हे गोविंद, बांके बिहारी तू ही बता, कैसे निभेगी प्रीत हमारी।

நப்பயிர் வைத்த முலாமைத்தமினாசி காசி கொண்ட பதிப்பா

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।